नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः।

नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जप

हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि हरि हरि बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी नित्य नित्य

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य